0: बताएं कि उरुग्वे के खिलाफ मैच 2-2 से ड्रॉ कराया। केप वर्डे का जो करिश्माई प्रदर्शन है वो लगातार जारी है। इस पूरी खबर
1: रातों रात स्टार बन ही गए थे जब शुरुआत हुई थी विश्व कप की स्पेन के खिलाफ। उस मैच से पहले वोजीना के जो इंस्टाग्राम फॉलोअर्स हैं वो 50,000 के करीब थे और अब अगर देखें तो उनके जो इंस्टाग्राम पर फॉलोअर्स हैं 17 मिलियन का आंकड़ा पार कर चुके हैं। जो जनसंख्या है केप वर्डे की वो 6,50,000 के करीब है, लेकिन जो फॉलोअर्स हैं इंस्टाग्राम पर वोजीना के वो 1,70,00,000 का आंकड़ा पार कर चुके हैं। तो दिखाता है कि किस तरह से फुटबॉल विश्व कप में हीरो बनकर उभरा है केप वर्डे, किस तरह हीरो बनकर उभरे हैं उनके 40 साल के गोलकीपर वोजीना। क्योंकि सब ये बात कर रहे थे कि फुटबॉल विश्व कप में कौन सी टीम फेवरेट है, कौन इस बार विश्व चैंपियन बन सकता है, लेकिन ये जो विश्व कप है ये सिर्फ खिताब जीतने या विश्व कप विश्व चैंपियन बनने की बात नहीं है। यहाँ पर आप कल केप वर्डे ने ड्रॉ खेल लिया था, लेकिन वो अगले राउंड में जाएंगे या नहीं वो इस बात पर निर्भर करता था कि स्पेन और उरुग्वे के मैच में क्या होता है। वो चाहते थे कि स्पेन उरुग्वे को हरा दे और जैसे ही स्पेन ने उरुग्वे को हराया अपना मैच खत्म होने के बाद केप वर्डे के सभी खिलाड़ी मोबाइल फोन पर स्पेन और उरुग्वे का मैच देखते हुए नजर आए और जैसे ही स्पेन ने उरुग्वे को हराया
0: बिल्कुल सुचित्रा रोमांचक मोड़ पर था ये मैच और इसीलिए केप वर्डे जो है एक इतिहास रचते हुए भी नजर आया है। बहुत बहुत धन्यवाद सुचित्रा तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। और
2: திருச்சிராப்பள்ளி வானொலியின் அலைவரிசைகளில் நேயர்கள், இதுவரை 2026 ஆண்டு நடைபெற்று வரும் ஃபிஃபா உலகக்கோப்பை கால்பந்து போட்டியின் தற்போதைய நிலவரத்தை கேட்டீர்கள். நேரம் 8:08.

0: கேட்ட பாடலோடு நிறைவு பெற்றது இன்றைய இனிய ராகம். திருச்சிராப்பள்ளி வானொலியின் முதலலை வரிசை 936 கிலோஹெர்ட்ஸில் இனி அகில பாரத இசை நிகழ்ச்சியில் பிரபோத் முகோபாத்யாய் அவர்களின் சந்தூர் இசையை கேட்டு ரசிக்கலாம். திருச்சி எஃப்எம் ரெயின்போ 102.1 இனி ஞாபகம் வருதே.
1: ये आकाशवाणी है, संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में प्रस्तुत है प्रभात मुखोपाध्याय का संतूर वादन। समृद्ध संगीत परंपरा वाले परिवार में जन्मे प्रभात ने संतूर की दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाई है। आपने सबसे पहले श्री दुलाल रॉय से संगीत की शिक्षा प्राप्त की, इससे पहले आपने लंबे समय तक उस्ताद साबिर खान से तबला सीखा, जिससे आप में लय और ताल की गहरी समझ विकसित हुई। आपने संतूर की विधिवत शिक्षा पंडित तरुण भट्टाचार्य और पद्मश्री पंडित भजन सोपोरी से प्राप्त की। वर्तमान में आप सारंगी वादक पद्म भूषण उस्ताद साबरी खान और सरोद वादक पद्म विभूषण उस्ताद अमजद अली खान से वाद्य संगीत की बारीकियों का प्रशिक्षण ले रहे हैं। संगीत में MA करने वाले प्रभात ने गायन और वाद्य संगीत की विभिन्न शैलियों का ऐसा समन्वय विकसित किया है जिससे उनका संगीत मधुर और पारंपरिक दोनों बन गया है। आकाशवाणी और दूरदर्शन के एक ग्रेट कलाकार प्रभात ने भारत के साथ साथ यूरोप में भी व्यापक रूप से प्रस्तुतियां दी हैं। आपने स्पेन, फ्रांस, चिली, केनिया और नॉर्वे जैसे देशों में कार्यक्रम किए। आपने फ्रांस में आयोजित इंडिया फेस्टिवल और स्पेन में आयोजित स्प्रिंग फेस्टिवल में भी भाग लिया। हाल ही में आपने ट्यूनीशिया में ICCR द्वारा आयोजित भारत स्वतंत्रता दिवस समारोह में प्रस्तुति दी। एक रचनात्मक कलाकार के रूप में प्रभात हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में नए आयामों की खोज में निरंतर कार्यरत हैं।
2: दिस इज आकाशवाणी इन टुनाइट्स नेशनल प्रोग्राम ऑफ म्यूजिक वी ब्रिंग यू अ संतूर रिसाइटल बाय प्रभात मुखोपाध्याय। Born in family of rich musical tradition, Prabhat has already made himself a name in the world of santoor. He was initiated by Sri Dulal Roy. He took taleem from Ustad Sabir Khan in tabla for a long time to acquire a sense of rhythm and tad. He took extensive training in santoor from Pandit Torun Bhattacharya and Padmashri Pandit Bhajan Sopori, the two maestros in the instrument. Presently, he is taking tutelage in the intricacies of instrumental music from the great Sarangi Maestro, Padma Bhushan Ustad Sabri Khan, Sarod Maestro, Padma Vibhushan Ustad Amjad Ali Khan. An MA in music, Prabhat has attained the distinction of bringing in a synthesis of the various phrases of vocal and instrumental music to make it both lyrical and ethnic. A-grade

0: artist of All India Radio and Doordarshan, Prabhat has traveled extensively within the country as well as in Europe. He has performed in so many countries, Spain, France, Chile, Kenya, Norway. He participated India Festival in France and Spring Festival in Spain. Recently, he performed India Independence Day Festival in Tunisia, organized by ICCR. A creative artist, Prabhat has been in search of new dimensions in Hindustani classical music.
1: आपके साथ आज इस कार्यक्रम में तबले पर संगत कर रहे हैं मुस्तफा हुसैन. प्रभात मुखोपाध्याय अपने कार्यक्रम का आरंभ राग रागेश्वरी से कर रहे हैं. प्रस्तुत है आलाप, जोड़ और झाला. विलंबित रचना झपताल और द्रुत रचना तीन ताल में निबद्ध है.
0: टुडे ही इज अकंपनीड ऑन तबला बाय मुस्तफा हुसैन. प्रभात मुखोपाध्याय बिगिंस हिज संतूर रिसाइटल विद राग रागेश्री. ही नाउ प्रेजेंट्स आलाप, विलंबित लय कॉम्पोजिशन सेट टू झपताल एंड द्रुत लय कॉम्पोजिशन इज सेट टू तीन ताल.

0: ये था प्रभात मुखोपाध्याय द्वारा संतूर पर बजाया गया राग रागेश्री। प्रभात मुखोपाध्याय अपने कार्यक्रम का समापन पहाड़ी धुन से कर रहे हैं।
1: That was राग रागेश्री performed by प्रभात मुखोपाध्याय। He concludes his recital with a पहाड़ी धुन।

0: पूर्वादन सुन रहे थे। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे थे मुस्तफा हुसैन। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र के स्टूडियो में रिकॉर्ड किया गया और आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से ही प्रसारित किया गया।
1: That was धुन played by प्रभात मुखोपाध्याय। He was accompanied on tabla by Mustafa Hussain. With that, we come to the end of this program. This program was earlier recorded in the studio of Akashwani Delhi. Also came to you from the Delhi station of Akashwani.
2: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें,